0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sanche Suru FM Studio Time
4: It's 7 AM Bihan ko 7 baje
5: टाइम चेक को साथ मा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई फर्स्ट एक्सप्रेस सोलू दुदकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

खेलाड़ी विद्यार्थी कलाकार विदेशी स्वास्थ्य शिक्षा खेलकूद में नगानी बाध्यता देश फर्किने मन हो समझे परदेशी को कति मन।

कुल यूरिया 4 ml प्रति लिटर पानी में मिसाई संपूर्ण पात भिजने गरी टप ड्रेस करने समय में छर्कनुहोस। टप ड्रेस गरी सके कम्तीमा 24 घंटा खेत

0: เคยมีสปาร์ตี้
1: यो चार पर्व में यूरोपेंस प्रस्तुत करते हैं रंगीन से घर बरसीन से उपहार रु 50,000 को यूरोपेंस को खरीद पाओगे लकी जो कूपन तुम्हें पाओगे 3% एसी एक चार डबल डोर से इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल ट्रक अन्य बम्पर प्राइस में पाओगे एक जोड़ी को लागी बाली टू यूरोपेंस घर मात्र ही ना रंगाऊ हो सपना बनी
2: महालेखा परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालय लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य संपादन का संदर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा gunaso@oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ

0: を爆弾飛ばしてください。
1: बाटा बचौर बचाओ यौनचनी हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका यौनचनी हिंसा को जोखिम में हुन सक्छन्। हिंसा छिमेकी आफन्त साथीभाई परिचित नातेदार जोसुकी हुन सक्छ। अभिभावक ने आफ्ना छोराछोरी को व्यवहार ख्याल राखौ। बाल बालिका को चालचलन बानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यस्तो पाइए उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौ। बाल बालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौ।
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर हम प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थ में शुद्धता यहां डीजल पेट्रोल तपाईले भनेको समय में तुरंत उपलब्ध संपर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19 समुद्र साक्य 9861-83-35-34 टेलीफोन 0385-20-43 नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87 नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर संगे न्यू आई स मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्स में संपूर्ण गाड़ी मरमत संबंधी सेवा उपलब्ध छ। यहां साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मरमत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46 नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 7 गारमा जोर बौद्ध सोलु
1: बाबा मलाई आज स्कुल जाने मन छैन आज जाँदिन नि है
2: सन्चो भएन
1: होइन यतिकै जाने मन लागेन
2: यतिकै पनि हुन्छ
1: मैले साइन्सको कन्ठे गर्न सकिनँ सरले कुट्नुहुन्छ
2: ए कुरा त्यस्तो थियो ल हेर म पनि तिमीसँगै जान्छु नमस्ते म्याडम म रिना गुरुङ
3: नमस्ते कति जाने

的小林叔叔。정우씨의수단은주얼과부산이자니이런모두다는우리의모두다는중부산의모습을수내서부카코로보니디스카는부산의모습을추디스카는부산의가능추디스카는모습을가능추부카는스팅고니스이디가빨리고타오는부문태국을고쳐눈도가는빨리고는자유를고쳐눈이더빨리부른때눈을가끔쓰고생활을눈을내죠눈도가면서나무에커서눈을썼죠눈알파마보호부를쳐이대리조수많이쓰고눈을붙이는수업을자니눈을눈을쳐따라올때는부산의꿈이되는말이우리는소가못썼죠여기가부산소리를듣고봐야합니다우리도빨리소리를듣고봐야합니다우리는또다른말을듣고있어우리도빨리소리요우리도빨리키는것들이아니에요또다른말을듣고있어그렇게해서또빨리타서우리도썼죠또빨리우리도소리를듣고있어우리도빨리듣고있어따라누가고생이고민자가고생이고생이미스완스부장중왕이생활을묵고보내니또누가고자리고우리는미스완스부장중이고생이있는우리는묵고이런것들과도믿고이고생치는게이만한것왕이생활은너우리쇼라이눈밤정의민의소울묵고보가우리그룹으로도고민자요우리여러분들과고생이안무리스우리기회로우리는사이오비쇼리소고나프로스코나무기인가요어쩜나고통을겪는사이아픈아이들이아픈아이다른아이들이아픈아이들이나이들이오비쇼리로대리아이로대리아이로대리아이로사람을가르쳐예비자들이핵순차한따구나아프성을원고하게기회스타트원고하게이다음이들어또빠른성을원인의친구인가이사리통수로우리를비밀따로이또빠이코나기나무사치니우리는죠이는어버워또빠이이스라엘코서비백해보는죠나니서로고버부소는원래미스완스를쓴죠우리허리고남북간보는저스테우리허리고고다르카우리는바람을우리의여자와지니스포트바람을무슨일을할우리꾸라이우리가슴쳐소리잖아요우리꼬이로따르카이미스타릭오르고이파라코르토코르따라내번의무당속에안도서벨불안을했을때아차는자리그무스토속에라고기능하는것하나라보미쇼코미츠코르니또는또브라이트초이글이생에눈사태코르니오르죠따라디니호르카이브라니디니호르니아프로보미쇼나도홀로브라이트초이글또빨리피하트코르니츠우리는위로이리로가로가로보내죠이렇게가로확진시킬거죠나아무눈물없이또빠이이케라리즈도피트보내죠그리고저기스피트나인지후손을쏘고보죠기또빠이그뒤에저기스피트나인지후손을쏘고시프는그나와야하는나한테오셔도확진시킬거가로가로보내니우리는거세게로보내서로보내요이인스코카이라고또빠이가로가고수오는죠내번내루미코포스톡딘어디아이고디스나스포스톡으로바다이고쳐기서바이너파브메리카촌로메쇼코루마나도추케가쳐이스코니어디아이쳐요예스포드로브락해고어우그토는서바이스톡에우리손가로우파상태동안에도움조리고쳐요페리마르메문석이아니아파이네도움이따로우리가까만해도되면따라우리의악미피파로서부가지방구스나무라고우리가악미가라그리고우리가란말도우리의악미를믿고있는거예요뜻뜻뜻뜻뜻뜻뜻이또빠이도또선배는거예요또는저요요우리선배도좀예수의마스터는이어떤모습우다무야무로의뜻뜻뜻뜻으로우라가는거다또는너무많이붙이요온통이야미카도우스티요대만스권이더욱티요예수라미카도우스위치권이있는거니아니여러분우리의뜻뜻고언제나티요예수예수내드라미마니스라이무너가야기저다성의우리의왜야하는지는내가우리의범위
सक्नुहुन्छ लेख्न सक्दैन। अब तपाईँलाई मेरो सोच्नु हेर्नु सक्ने प्रश्न मेरो पुनर्जन्म कसरी संरक्षण परमेश्वरसँगको तपाईँको सम्बन्धको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्नुहोस्। यसको मतलब तपाईँलाई स्वीकार गर्नुको निम्ति यसले उहाँको मृत्युको साथमा तपाईँको पापको दण्ड परमेश्वरको निःशुल्क उपहारको रूपमा तपाईँको निम्ति तिर्नु भयो। दोस्रो आफ्नो सारा हुँदैन विश्वास

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Studio FM. Studio time.
0: It's 7 p.m. Start call 7:00.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

महीना तिर्नुहोस्, सात महीना चलाउनुहोस। क्लासिक टेक को 200 Mbps इंटरनेट सात महीना को लागि मात्र रु 5,700 मा। साथ ही क्यारो टीवी ऐप में पाउनुहोस् 200 भन्दा बढी HD र HDTV चैनल हरू, वाईफाई 6 सहित को सुपर फास्ट इंटरनेट र IPTV अब क्लासिक टेक में। आज ही जडान गर्नुहोस्, कल गर्नुहोस् 9709184147। शर्तहरू लागू हुनेछन्।

0: Time check. Solu FM is studio time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू.
3: Wherever you are, stay connected with. Wherever you are, stay connected.